आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM गोल खांटी सोना।
1: प्रभातेर आलोए रांगा प्रभात बिना, प्रभात बिना सुनछेन 100.1 FM गोल्डे। प्रभात बिना, प्रभात बिना 100.1 FM।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती स्मरैव ततो जय मुदीरयेत्। वंदना करी गो माता देवी सरस्वती सर्वविद्याधिष्ठात्री तुम्हाय करी गो।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह।
1: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है 100.1 FM गोल्ड पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, लेकर आ गई है सुहानी सुबह सुहाने सफर के साथ। नई सुबह का नया दौर है, रोशनी में डूबा ये सारा सारा शहर है दोस्तों। जी हाँ, सुबह सुबह उठे हैं तो मीठी मीठी बातों के साथ लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें।

0: खड़ूस।
1: सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मधे की, अपना ये माल।

जी हाँ दोस्तों, सौ में से है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की और मीठा मीठा बोलो। शुरुआत हो चुकी है मीठे से, तो ऑफ कोर्स दिन हमारा मीठा ही और मजेदार गुजरने वाला है। और सुहानी सुबह का सफर तो बस होगा ही सुहाना, क्योंकि जुड़ चुकी है आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और आज बैक टू बैक प्रोग्राम्स में मैं आपके साथ रहूंगी। दोस्तों दातुन वातुन तो लेकर आपने अपनी फ्रेश हो गए होंगे, और हो सकता है कि अभी तो हो नहीं सकता, आई एम श्योर कि आपने चाय एक बार तो पी ली होगी। अब शायद दूसरे राउंड की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी ऐसे ही चाय पीने लगती हूँ। और कबीर दास जी ने भी बड़ा ही सुंदर दोहा मीठी मीठी बात पर बोला है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि भाई ऐसी मनुष्य को भाषा बोलनी चाहिए जो खुद को भी अच्छी लगे सुनने में, और जो सामने वाला है उसे भी अच्छी लगे। तो दिल की बातें कहिए जरूर, पर प्यार से, मीठे मीठे से।

जिंदगी को सिर्फ जीते चले जाना अर्थ नहीं देता, बल्कि ये हमें तब समझ आती है जब हम कुछ पल रुककर उसे महसूस करते हैं। जैसे सुबह की चाय की भाप, खिड़की से आती हवा, किसी अपने की हंसी या दिन भर की भागदौड़ के बीच मिला एक शांत सा पल। तो चलिए इस मंडे मॉर्निंग को महसूस करने में तवज्जो देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ FM गोल्ड पर आप हैं उर्वशी के साथ गोल सुप्रभात में।

समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है बच्चों के स्कूलों में, तो इस बार स्क्रीन टाइम की जगह क्यों ना स्किल टाइम भी बढ़ाया जाए, है ना। एक नई हॉबी, नई किताब, थोड़ा आउटडोर खेलना, थोड़ा आर्ट, थोड़ा म्यूजिक, ढेर सारी फैमिली मस्ती। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो पूरी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये, क्योंकि छुट्टियाँ वो नहीं होती जो बस खत्म हो जाएँ, बल्कि वो होती हैं जो कुछ नई यादें, कुछ नई बातें जोड़ जाएँ। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाएँ छुट्टियों को मज़े से।

7:25 और 2 सेकंड हो चुके हैं और आप हैं गोल सुप्रभात में उर्वशी के साथ। वैसे दिल्ली का मौसम भी बड़ा दिलचस्प है ना दोस्तों, कभी धूप कभी बादल कभी अचानक तेज हवा, बिल्कुल जिंदगी की तरह जो हर दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज लेकर आती है। जून की पहली तारीख है और दिल्ली NCR का मौसम भी जैसे नए महीने की एंट्री को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेज गर्मी के बाद हवाओं में थोड़ी सी राहत सी महसूस हुई, लेकिन गर्मी ने अभी भी पूरी तरह अलविदा नहीं कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है और कहने को तो अभी भी अगर धूप में खड़े हो जाओ तो गर्मी लगती है। हाँ, छाया में अगर थोड़े बहुत हवा चल रही हो तो थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस होता है। आज का टेम्परेचर की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है।

वैसे इस गाने में पोटेंशियल है, पूरा दिन वान पर चढ़ा रह सकता है ना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप सुन रहे थे गोल सुप्रभात और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे FM गोल्ड पर।

0: दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के ताजा समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, बातें होंगी मौसम के मिजाज की, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से, और फिर याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को है जिनका जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि। आज आपके हम सफर हैं हम, यानी मैं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, नमस्कार।
1: नमस्कार मुनीश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड वी आर वेकिंग अप विद यू राइट हियर ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो फ्रॉम द हेडलाइंस शेपिंग आवर नेशन टू द स्टोरीज अनफोल्डिंग अक्रॉस मेट्रो स्ट्रीट्स, वी हैव गॉट एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट योर डे informed and inspired. With that, on this very note, well, let's begin our program with the headlines, shall we?
0: जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर डिफेंस रिचर्ड माउस विल को-चेयर द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग इन न्यू दिल्ली टुडे। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड दैट ड्यूरिंग द डायलॉग डिस्कशंस विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एनहांसिंग मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंक्लूडिंग को-डेवलपमेंट एंड को-प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज। The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region and identify new areas of collaborations in defense and security.
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान होगा 18 जून को और मतगणना भी उसी दिन होगी।
1: Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Ahead of the launch of the campaign, Mr. Chauhan has spoken to the chief ministers of all states for their participation in this campaign. The minister also appealed to union ministers and other public representatives to join the initiative.
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्री

0: परिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 41, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है।
1: Renowned singer Suman Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai yesterday. She was 89. So now, let's dive into her melodious career with this report from our correspondent.
2: Born on 28 January 1937 in Dhaka, then part of British India and now in Bangladesh, Suman Kalyanpur made her Hindi film debut in the mid-1950s and went on to record hundreds of songs with legendary composers and singers, especially Mohammad Rafi. Her most popular songs include Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche, Nana Karte Pyar and Tumne Pukara Aur Hum Chale Aaye.

0: है और एम्बुलेंस अग्निशमन वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत की वास्तविक शक्ति सिर्फ आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं है बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में वो निहित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। भारत की विविधता में एकता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद देश की आत्मा एक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।
1: Now we'll head to Chennai. Southern Railways has announced temporary additional stoppages for 6 trains at Tiruvallur Railway Station from today till 20th due to yard remodeling and non-interlocking works at Arakkonam Junction. The additional stoppages have been announced as part of the railway infrastructure works worth 97.73 crore rupees being carried out at Arakkonam Junction. Another update. Well, Southern Railways has installed 81 water vending machines across 37 railway stations in the past financial year to provide passengers access to safe, hygienic and affordable drinking water, particularly during summer travel.
0: और दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई की, जहां दिल्ली की ही तरह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने रविवार को मुलुंड के खिंडीपाड़ा स्थित अमर नगर में 150 अवैध आवासीय और व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए जमीन खाली कराने के प्रयासों के तहत की गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना की प्रगति को सुगम बनाने के लिए अगले सप्ताह क्षेत्र में स्थित अतिरिक्त 234 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जाना है। और उधर ठाणे पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 500 ग्राम मेफेड्रोन क्रिस्टल पाउडर जब्त किया है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत का अनुमान है लगभग 70 लाख रुपए। इसके अलावा एक देसी पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने 27 मई को मुमरा के ओल्ड खारे गांव टोल नाका के पास 2 स्कूटरों को रोका और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कालवा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को 2 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
1: We will focus now on Bengaluru, where Design Dapple 2026 was hosted by the Army Institute of Fashion and Design under the Army Welfare Educational Society, and this showcased the creative works of the graduating batch of 2023-26. Miss Shweta Singh received the prestigious Chief of Army Staff All-Round Best Student Rolling Trophy. The event also featured presentation of academic awards, design honours as well, and this included GOC INSEE Southern Command Rolling Trophy for Best Designer and the Chairman's Award as well. Another update, Southwestern Railway is set to conduct trial runs of the Vande Bharat Express between Bengaluru and Mengaluru in June, marking a key step towards introducing the service on the challenging Ghat section route. An 8-coach Vande Bharat train equipped with an auto emergency brake system. This will be used for the trials between Yeshwantpur and Mengaluru Central. And this route passes through difficult terrain featuring 57 tunnels, 226 bridges and 108 sharp curves as well. Now we'll also head to Hyderabad. Telangana is implementing the largest housing program in independent India's history. So Housing Minister P. Srinivas Reddy said the state is providing free houses to poor families with 5 lakh rupees per house. The minister said in the first phase, over 4 lakh houses have been approved across the state. He announced that Chief Minister Revanth Reddy will lay the foundation stone for the second phase today in Asifabad district. So the minister said that the second phase will have 2.5 lakh houses and the both phases combined, each constituency will get between 5,000 to 6,500 houses. He added that tribal constituencies in scheduled areas will get an additional 500 to 1,500 houses. So these were the Metro City updates.
0: तो दोस्तों ये थी बात महानगरों की और

0: 1987 সালের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের 12 নম্বর ধারার অধীনে যোগ্য নাগরিকরা ন্যায়বন্ধু মোবাইল অ্যাপ এবং www.probono-doj.in এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে পারেন।
1: FM गोल्ड यानी खरा सोना आकाशवाणी कोलकाता में आपका फिर से स्वागत करती है दोस्त सविता। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत फिर से हो चुकी है और आइए आज के मौसम की जानकारी झटपट आपके साथ कर लेते हैं साझा। कोलकाता व कोलकाता के आसपास आगामी 24 घंटों में आंशिक रूप से आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं दोपहर और शाम के समय गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अधिकतम नमी 95%, न्यूनतम नमी 92%। कल कहीं बारिश नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी मौसम की जानकारी और आइए अब सुन लेते हैं एक गीत। दोस्तों, आज है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त जी का जन्मदिन। उनको याद करते हैं उनकी फिल्म रात और दिन का ये गीत सुनवाते हुए।

दोस्तों, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर, जी हाँ, नाना करते प्यार, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे गीत। जी हाँ, 31 मई 2026 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया सुमन कल्याणपुर, हमारी दिग्गज पार्श्व गायिका का। मधुर आवाज से कई पीढ़ियों को, अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर ने। दोस्तों, सिनेमा में उनके सफ़र की बात करें तो शुक्राची, चांदनी, मंगू जैसी फिल्मों से शुरुआत की उन्होंने 1954 में। इन वर्षों में उन्होंने कई सदाबहार क्लासिक सॉन्ग्स दिए, जिनमें शराबी शराबी, ये सावन का मौसम, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार, ना तुम जानो हमें, पर्वतों के पेड़ों पर जैसे अनेक गीत, और ज़्यादातर गीत उन्होंने दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए। उनके निधन की खबर सुनकर के, जी हाँ, राजनीति और बॉलीवुड के जगत में शोक छा गया है। उनके निधन पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, भारत की मशहूर और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का, जिनका कि रविवार की शाम को निधन हो गया, 89 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली, संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और हम भी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए, आइए हमारी प्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर की द्वारा गाया हुआ एक गीत सुनते हैं। दोस्तों, इसी गीत के साथ आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। सुहानी सुबह में आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। मुलाकात होगी 10 बजे नॉनस्टॉप गपशप पर, जी हाँ, नॉनस्टॉप गपशप एफएम रेनबो पर, और 11:10 पर कार्यक्रम लू आ गई उनकी याद में। आज हम हमारी गायिका सुमन कल्याणपुर की बातें करेंगे, उनकी यादों, बातों, गीतों के साथ हम आज एक हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम, जी हाँ, एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम लू आ गई उनकी याद में। और आइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को बनाते चलिए। इसी के साथ हमारी प्रिय गायिका के लिए हम ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि वो इस सुंदर संसार में आई, अपनी मधुर आवाज़ से इस सुंदर संसार को सजाया, और वो जहाँ हैं, जहाँ गई हैं, वो भी तो प्यार का ही सागर है, प्यार का ही संसार है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
4: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
5: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और

0: की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई

0: जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी

0: के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. The President of Myanmar will also meet President Draupadi Murmu this evening at Rashtrapati Bhavan. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. President U Min Aung Hlaing also addressed Myanmar-India Business Forum. The Myanmar President arrived in Gaya, Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. The notification for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS

0: और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी CDC अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजी गई। ये चिकित्सा सहायता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है। CDC ने अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर बाड़बंदी, अवैध प्रशासन और कथित सीमा हत्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जल बंटवारे के मुद्दे, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और ड्रोन घुसपैठ जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापार, जहाजरानी, काउंसुलर मामले और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से लगभग 860 किलोमीटर भौगोलिक बाधाओं के कारण बाढ़ रहित है। 4 दिवसीय बैठक के समापन पर 11 जून को चर्चाओं के संयुक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे भारत में नेपाली समुदाय से मिलेंगे और अयोध्या की भी यात्रा करेंगे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में सांसद विपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पोडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ये चुनाव पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक प्रावधानों के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए उन्हें इवान सेपेडा को उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाया है।
3: प्रारंभिक रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो देला एस्प्रियेला सबसे आगे हैं, जबकि वामपंथी सीनेटर इवान सेपेडा दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए 21 जून को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। इवान सेपेडा राष्ट्रपति पेट्रो की शांति वार्ता नीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबेलार्डो देला एस्प्रियेला और पालोमा वेलेंसिया अपराध और हिंसा से निपटने के लिए कड़े सैन्य रुख का समर्थन करते हैं। चुनाव परिणाम से कोलंबिया की सुरक्षा नीति, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीति और अमेरिका के साथ संबंधों की दिशा तय होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्राची बाजपेयी।
0: इसराइल

0: सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने ब्लूफोर्ट किले पर इजरायल का ध्वज फहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने IDF को लेबनान में कार्यवाही बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा गया है। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।
2: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
1: विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वे 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम ने गोवा के मरगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वियतनाम में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और

0: स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला एथलीटों ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण और 4x100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, जबकि पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता।
1: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $89.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक

ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा, वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने

एफएम गोल्ड खरा सोना पर स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता, लेकर आई है आज आपके लिए यादों बातों और गीतों का सिलसिला कार्यक्रम। लो आ गई उनकी याद में।

जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी है जो हमेशा धोखा दे जाती है। और ये सत्य है बिल्कुल कि जो ज़िंदगी और मौत के बीच में, मौत को एक दिन आना ही आना है और ज़िंदगी को धोखा देकर जाना ही है। भारत की मशहूर और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का रविवार शाम को निधन हो गया। 89 ईयर्स की थी वो। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो बीमार हो गई। उनके निधन की खबर ने पूरे देश और संगीत जगत को शोकमय कर दिया है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत तक के दिग्गज उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने ना ना करते, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा जैसे सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी। उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि बढ़ती उम्र से जुड़ी दिक्कतों के कारण रविवार की शाम को उनके घर पर उनका निधन हो गया। अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर, जिनकी पहचान उनके गीत थे। जन्म हुआ उनका 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत में। सुमन हेमदी के नाम से उन्होंने कई गीत गाए, लेकिन शादी के बाद उनका नाम सुमन कल्याणपुर हुआ। उनके महान कवि जी डी माडगुलकर के गीत गदिमा के से मराठी संगीत में उन्होंने अपनी शुरुआत की, और मराठी गीत उन्होंने कई ऐसे गाए जो आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सुमन कल्याणपुर ने न केवल मराठी में बल्कि हिंदी, गुजराती, बंगाली में हजारों गीत गाए। बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन आइए पहले सुनते हैं उनका एक और गीत जो काफ़ी हिट हुआ।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने 1954 में फिल्म मंगू से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें संगीतकार मोहम्मद शफी के निर्देशन में एक शानदार लोरी थी। बाद में शमी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया और ओपी नैयर साहब ने इसे संभाला। बात कर रही हूँ मैं हिंदी फिल्मों की। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1954 से मंगू फिल्म से की, और बाद में जब शफी ने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो ओपी नैयर साहब ने इसे संभाला और नियमित गायकों को चुना, लेकिन लोरी को फिल्म में उन्होंने बरकरार रखा और हिंदी फिल्मों में इस तरह से उनका सफ़र जारी रहा। लेकिन उनके बहुत सारे गीत रफ़ी साहब के साथ काफ़ी लोकप्रिय और यादगार रहे हैं। हम कुछ गीतों की बात करेंगे जो युगल गीत के रूप में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाए हैं। चलिए पहले एक गीत सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। जी हाँ, अभी अभी जो गीत आपने सुना वो भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ही था। दूसरा गीत फिल्म ब्रह्मचारी से सुनवा रही हूँ, सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ, वो एक दौर था जब मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ चहक रही थी, बहक रही थी। भारतीय सिनेमा की दिग्गज और मखमली आवाज़ वाली पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के अतुलनीय संगीत सफ़र को दर्शाता है। दोस्तों, उनकी यात्रा हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं के सदाबहार गीतों का एक अनमोल संग्रह है। उन्होंने मराठी संगीत की दुनिया में निम्बोनीचिया, झाड़ा मागे और भाटुक कलीचा, खेल मंडीला जैसे गीतों को अमर कर दिया। उन्होंने अपने संपूर्ण कैरियर में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश जैसे दिग्गजों के अलावा मन्ना डे और अन्य सह साथियों के साथ 857 गाने लगभग गाए। बातें करते हैं, पहले सुनते हैं एक और गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म अप्रैल फूल से मोहम्मद रफ़ी और कल्याणपुर की आवाज़ों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतबद्ध किया शंकर जय किशन ने। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत गीत गाए और जब हमने उनके युगल गीतों की खोज की तो सबसे पहला उनका गीत मिला श्री कृष्ण भक्ति, जो कि 1955 में गाया। ये गीत खास लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन चित्रगुप्त ने उनके पहले युगल गीत की रचना की थी और बाद में एसएन त्रिपाठी ने उन्हें 1956 में रिलीज़ हुई फिल्म हातिम ताई और पन्ना में रफ़ी के साथ युगल गीत गाने का प्रस्ताव दिया। हातिम ताई का गीत था जाने वाले खुदा की रहमतों का अच्छा है। ये गीत उनका अच्छा लगा लोगों को। सुमन हेमदी, जो कि पहले इसी नाम से जानी जाती थी, धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उस समय जो दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले थी तो उस समय में उन्हें उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काफ़ी गाया गाने और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। '57 में उनका युगल गीत पहली बार हिट हुआ फिल्म मिस बॉम्बे के लिए। उन्होंने संगीतकार हंसराज बहल के निर्देशन में तीन गाने गाए, उनमें एक एक एकल गीत था और दो युगल गीत। तो दोस्तों, उनका मिस बॉम्बे का गीत हम सुनवाने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं हम एक और प्यारा गीत है, अजाऊ ना आए बालमा, सांझ और सवेरा फिल्म का, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत गाया है। शंकर जय किशन की कंपोजिशन है और हसरत जयपुरी ने बोल लिखे हैं। ये एक बेहद लोकप्रिय अर्धशास्त्रीय गीत है, महमूद और शोभा खोटे की मशहूर जोड़ी पर फिल्माया गया है। और इस गीत को जो जिसके अलाप और ऊंचे सुर थोड़े मुश्किल थे, लेकिन सुमन कल्याणपुर ने इस गीत को बखूबी निभाया है। और इस गीत में एक चीज़ और है, सारंगी का बेहतरीन इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए सुनवाते हैं इस गीत को और महसूस कीजिए, आनंद लीजिए।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: तुम्हें पूजा, तुम्हें चाहा। जी हाँ, उनके प्रशंसकों ने उन्हें बहुत चाहा। सुमन कल्याणपुर ने न केवल मराठी में बल्कि हिंदी, गुजराती और बंगाली में हजारों गीत गाए। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2023 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने सभी अपने कलाकारों के साथ में गीत गाए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। शिमला, लव इन शिमला फिल्म का ये गीत, आइए लता मंगेशकर, माफ़ कीजिए, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ही आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया। दोस्तों, ये गीत खूबसूरत नवोदित अभिनेत्री साधना के लिए ये गीत उन्होंने गाया और उनकी आवाज़ कुछ हद तक लता मंगेशकर जैसी मिलती जुलती लगती है। ये महज संयोग है या फिर ऐसा लगता है कि बाद में उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ को चेंज किया अपनी पहचान बनाने के लिए।

जी हाँ, हसीन और मधुर आवाज़ का सफ़र करते करते हम अपने अंतिम छोर पर पहुँचे गए हैं दोस्तों। सुमन कल्याणपुर को शंकर जयकिशन ने पहली बार ब्रेक दिया फिल्म दिल एक मंदिर के लिए। उन्होंने उसमें एक एकल गीत और एक युगल गीत गाया था। युगल गीत भले ही बैकग्राउंड में बजाया गया था, लेकिन यह लोकप्रिय खूब हुआ। दोस्तों, जयशंकर शंकर और जयकिशन के साथ उनका जुड़ाव जारी रहा और समय समय पर उन्होंने उनके साथ गाने गाए। फिल्म दिल एक मंदिर का जो टाइटल सॉन्ग है वो भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी है और उतनी ही शिद्दत के साथ मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर ने ये गीत गाया है। वो छोड़कर गई हैं, हम ईश्वर से ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी हों, जिस भी दुनिया में हों, वो शांति से, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो वहाँ भी अपने सुरों का जादू बिखेरती रहें।

फिल्म दिल एक मंदिर में आपने सुना कि सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी को। दोस्तों, स्वर्णिम दौर के ये सुनहरे गायक और गायिका हैं। इस दौर की कड़ी में जाने वाली ये शायद अंतिम कड़ी। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने अपने लगभग सभी साथियों के साथ एक से एक खूबसूरत गीत गाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी और हम सबके बीच, हम एक कहते ना कि एक सुनहरे दौर की मिश्री घोलती रहेगी हमारे कानों में। उनकी वो मीठी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। और चलते चलते उनका अंतिम गीत फिल्म नसीब से सुनवाते हैं मिस्टर जी डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी आपके साथ, जी हाँ, 5 तारीख को और 3 तारीख को छायालोक में भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। चाय एंड क्लासिक्स में भी हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification was also issued for the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. The polling will be held on the 18th of this

0: অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ট্রাম্প আরও বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উচ্চ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তা নষ্ট করে দেবে। ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ ওয়াগের খালিবাফ সাফ জানিয়েছেন, দেশের অধিকার সুরক্ষিত না হলে তেহরান কোনো চুক্তি অনুমোদন করবে না। মায়ানমারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 55। নামখান টাউনশিপের কুংটুপ গ্রামে গতকাল এই বিস্ফোরণ ঘটে। আহত হয়েছে আরও 70 জনেরও বেশি মানুষ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, খনির কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা উপকরণে বিস্ফোরণ হওয়ায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিস্ফোরণে শতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং কুংটুপ গ্রামের বড় অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তা দিচ্ছে। ভারত সাফ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। গতকাল গোয়ার মারগাঁও এর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে গ্রুপের খেলায় ভারত বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে 3-0 গোলে হারিয়ে গ্রুপ বি এর শীর্ষে উঠে এসেছে। প্যারি জাকসা, লিন্ডা কোম এবং মালবিকা পি প্রত্যেকে একটি করে গোল করেন। ভারত আগামী বুধবার সেমিফাইনালে গ্রুপ এ রানার্স ভুটানের মুখোমুখি হবে। অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশ গ্রুপ এ বিজয়ী নেপালের বিরুদ্ধে খেলবে। গুজরাট টাইটান্সকে 5 উইকেটে হারিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গতকাল ফাইনালে বেঙ্গালুরু টসে জিতে গুজরাটকে ব্যাট করতে পাঠায়। গুজরাট 20 ওভারে 8 উইকেটে 155 রান তোলে। রান তাড়া করতে নেমে বেঙ্গালুরু 5 উইকেট হারিয়ে 2 ওভার বাকি থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আর একবার। পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় আরও 35 জনকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। রাজ্যের মহিলারা আজ থেকে বিনামূল্যে সরকারি বাসে চড়ার সুবিধে পাবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লিতে মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছেন। ভারত ওমান সর্বাত্মক অংশীদারিত্ব চুক্তি সিইপিএ আজ থেকে বলবৎ হয়েছে। ভারত সাফ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। খবর শেষ হলো, পরবর্তী খবর 1:30।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

0: योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Aung San Suu Kyi are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahavar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Gross goods and services tax GST collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees, state GST at 45,143 crore rupees, and integrated GST at 51,990 crore rupees. Taxable supplies of goods grew 26.9% during the reported period, reflecting domestic demand, while the same for the services sector grew 22.2%, demonstrating structural resilience in domestic consumption. Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand.

0: गुजरात और कर्नाटक में चार चार सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीट, झारखंड में दो और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित

अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

0: के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar. Prime Minister Narendra Modi and visiting Myanmar President U Me Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, including trade and economic ties, defence and security, border management, as well as regional situation. Briefing media in New Delhi after the talks between the leaders, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed an interest in forging closer cooperation,

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: परियोजना प्रस्तुति में आज हम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्र आयोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के खेती योग्य भूमि वाले भूमिधारक किसान परिवारों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को साल में 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में दिया जाता है। अब तक 21

0: किश्तों के माध्यम से देश के पात्र किसान परिवारों को कई लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना का लाभ किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर भूमि अभिलेखों की फीडिंग, बैंक खातों को आधार से जोड़ने और ई केवाईसी सत्यापन पूरा करने के बाद प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि संबंधित सामग्री जैसे बीज, खाद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके लघु और हाशिए के किसानों की आय में वृद्धि करना है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार हो सके। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने से किसानों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है और कृषि गतिविधियों की निरंतरता बनी रहती है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहलों में से एक है, जो सीधे किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के इसके महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र को रेखांकित करती है। इसकी विशेषता ये है कि इसके लाभार्थियों में 25% से अधिक महिलाएं हैं, जो इसके समावेशी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों को अपने खेतों में निवेश करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुर्गापुर के किसान अनिल हल्दर को भी कृषि गतिविधि के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता समय पर प्राप्त हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

एफएम गोल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है शाम के 5:29 और आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा 6 बजे लेंगे एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक और हम चलेंगे, रुक करेंगे न्यूज रूम की ओर और 6:10 पर एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होते हुए ये कार्यक्रम चलता रहेगा, इसका दूसरा भाग 7 बजे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है एक खूबसूरत गीत के साथ, मोहब्बत का मौसम नामक गीत से, और आगे भी बहुत सारे गीत हैं। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। हालांकि बादल कहीं कहीं कभी कभी रुख कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना जलवा, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ऐसे में बार बार दिल करता है कि गरजत बरजत सावन आयो रे।

बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म दादा से, और आपको बताऊं जो आवाज, जिस आवाज को आपने सुना वो आवाज एक ऐसी आवाज है जिसे हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद पुरस्कार 3 बार प्राप्त किया। ये वो आवाज है जिसे भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था साल 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की, जो बस कुछ पल पहले हमारे साथ थी और अब हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आज इस कार्यक्रम में चाय एंड क्लासिक्स में उन्हीं के गीतों को मैं बजाऊंगी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी।

रेशम की डोरी से आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और सच मानिए, हमारा ये जो उत्सव है जो कि सावन के महीने में हम मनाते हैं, रक्षाबंधन, हमारा रक्षाबंधन का उत्सव इस गीत के बिना बिल्कुल और बिल्कुल फीका होता है। चाहे हम कहीं भी रहें, किस हाल में रहें, भाई को राखी पहनाते हुए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये सदाबहार गीत मुझे लगता है कि आने वाले 500 साल तक रहेगा। ऐसी थी उनकी आवाज़। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में सुमन हेमाडी के रूप में हुआ था। उनके पिता शंकर राव कर्नाटक के कुंडापुर तालुक के हेमाडी गांव के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। वे भारतीय केंद्र बैंक में उच्च पद पर कार्यरत थे और लंबे समय तक ढाका में तैनात थे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ में ये जो खनक थी, वो उसमें कहीं ना कहीं बंगाल की मिट्टी की खुशबू ज़रूर थी। माता सीता हेमाडी के अलावा उनके परिवार में 5 बेटियां और एक बेटा था, जिनमें सुमन सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की।

101 FM गोल्ड पर आज हम सुमन कल्याणपुर को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा गाए गाने के साथ। सुमन के अनुसार उनके घर में सभी को कला और संगीत में रुचि थी, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित था। फिर भी 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने का प्रस्ताव वो ठुकरा नहीं सकी। ये उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके बाद उन्हें 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्रची चांदनी के लिए गाने का मौका मिला। उस समय शेख मुख्तार मंगू फिल्म बना रहे थे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। शेख मुख्तार शुक्रची चांदनी के गानों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मंगू फिल्म के लिए 3 गाने उनके आवाज में रिकॉर्ड करना चाहा। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों से बाद में मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर ने लिया और उनके 3 गानों में से केवल 1 लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझे फिल्म में रखी गई, और इस तरह 1954 में रिलीज हुई फिल्म मंगू के साथ हिंदी सिनेमा में उनका पदार्पण हुआ।

0: फिल्म मंगू के तुरंत बाद सुमन ने संगीतकार नौशाद के निर्देशन में फिल्म दरवाजा, जो कि साल 1954 में बनी, के लिए 5 गाने गाए, जिसका निर्माण इस्मत चुगतई ने किया था और निर्देशन शाहिद लतीफ ने। चूंकि दरवाजा पहले रिलीज हुई थी, इसीलिए इसे आम तौर पर सुमन कल्याणपुर की पहली फिल्म मानी जाती है। उसी वर्ष सुमन ने मोहम्मद रफी और गीता दत्त के साथ फिल्म आर पार के लिए ओपी नैयर के हिट सामूहिक गीत मोहब्बत कर लो जी कर लो किसने रोका है फिल्म संस्करण में गाया। सुमन के अनुसार उन्हें गाने के लिए कुछ एकल पंक्तियां दी गई थी और इस गाने में उनकी सेवाओं का उपयोग मुख्य रूप से एक कोरस गायक के रूप में किया गया था। ये ओपी नैयर के लिए गाया गया उनका एकमात्र गाना साबित हुआ।
1: भर लो।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन

0: मेंशन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides express interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
5: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

1965 में बनी मोहब्बत इसको कहते हैं से आपने सुना ये ड्यूएट सॉन्ग। संग में जो आवाज थी वो रफी साहब की थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि तलत महमूद ने एक संगीत कार्यक्रम में सुमन कल्याणपुर को गाते हुए सुना और उनकी गायकी से बेहद प्रभावित हुए। एक नवोदित कलाकार होने के बावजूद उनके करियर को तब बड़ी सफलता मिली जब तलत ने उनके साथ युगल गीत गाने के लिए हामी भरी और जिससे फिल्म जगत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और ये फिल्म थी दरवाजा। उन्होंने मंगू के लिए कई एक गीत गाया जिसको मैंने आपको बताया, कोई पुकारे धीरे से तुझे। कल्याणपुर ने उसके बाद मियां बीवी राजी 1960 में, बात एक रात की 1962 में, दिल एक मंदिर 1963 में, दिल ही तो है 1963 यानी कि उसी साल, 1964 में शगुन, जहां आरा, सांझ और सवेरा और 1967 में नूर जहान, 1968 में साथी, 1971 में पाकिजा के लिए पाशर्फ गायन प्रदान किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर जयकिशन, संगीतकार रोशन, मदन मोहन, एसडी वर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उषा खन्ना के लिए गाने गाए। आपको बताने में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उन्होंने 740 से अधिक फिल्म और गैर फिल्मी गाने गाए और 1960 के दशक में रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए।

ये गीत हमने लिया था सांझ और सवेरा से, और दोस्तों इस गीत से पता चलता है उनकी कलात्मक उपलब्धियां और उनका जो एनर्जी लेवल और उनमें उनकी जो दक्षता थी संगीत के प्रति, इस गीत से पूरी तरह से हमें प्रतीत होता है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी शाम के 6:29, आइए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक बार फिर हम मिलेंगे आपके साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स पॉपी के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में, जिन्होंने बस कुछ पल पहले हमें अलविदा कहकर चली गईं।

आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की और उनकी आवाज गायिका लता मंगेशकर के साथ बहुत मिलती जुलती थी। उनके कई गाने लता की शैली से अविभाज्य हैं क्योंकि उन्होंने लता के समान ही गुणवत्ता के साथ गाया था। वो कहती हैं कि अपनी आवाज और लता की आवाज में समानता को लेकर काफी असहज थी। उन्होंने एक बार कहा कि वो उनकी आवाज से लता के आवाज से काफी प्रभावित थी। कॉलेज के दिनों में उनके गानों को वो गाया करती थी और अगर ये कहें कि वो उनकी इंस्पिरेशन थी कम न होगा। मेरी आवाज नाजुक और पतली थी, मैं क्या कर सकती थी। रेडियो सिलोन पर जब गाने प्रसारित होते थे तो कभी नाम नहीं बताए जाते थे, यहाँ तक कि रिकॉर्ड में भी कभी कभी नाम नहीं लिखा हुआ करता था और ऐसे में भ्रम पैदा हो जाया करता था। 1950 और 60 के दशक को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब महिला पार्श्व गायन में शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं का वर्चस्व था। जिस दौरान लता ने रॉयल्टी संबंधी मुद्दों को लेकर रफी के साथ गाने से इनकार कर दिया था, उसी दौरान सुमन ने रफी के साथ युगल गीत रिकॉर्ड किए थे और इस दौरान उन्होंने 140 से भी अधिक युगल गीत गाए।

भी पुकारे लेकिन वो शायद वापस ना आए, लेकिन हाँ उनकी आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी, सदा सदा के लिए रहेगी। और तो और ये भी कहना चाहूंगी कि उस जमाने में 1950-60 के दशक में उन्होंने सभी पुरुष गायकों के साथ काम किया, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना दे, तलत महमूद और हेमंत कुमार। रफ़ी के साथ उनके यादगार

ना एबलमा, साथ ही मुकेश के साथ उन्होंने ये किसने गीत छेड़ा, आखिर अखियों का नूर है तू, मेरा प्यार भी तू है, दिल ने फिर याद किया, इन गीतों को मैंने आपको सुनाया। और मन्ना दे के साथ उन्होंने दत्ताराम के संगीत निर्देशन में एक लोकप्रिय युगल गीत गाया, न जाने कहां हम थे।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म फर्ज से, और अभी अभी जिस गीत को आपने सुना उसे हमने लिया था अपने रंग हजार से। और इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ, एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी 7:02 पर FM रेनबो पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आर के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यम

0: उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said Myanmar sits at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East as well as Mahasagar and Indo-Pacific policies. President Draupadi Murmu received Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan this evening. President Hlaing will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The Inter-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, or SEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations, Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that SEPA is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust.
3: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
1: Intern Australia affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second Indo-Australia Defence Minister's dialogue in New Delhi, Defence Minister Rajnath Singh and his Australian counterpart Richard Marles stressed the importance of freedom of navigation and overflight, unimpeded trade and lawful use of the seas in accordance with international law. The Trinamool Congress or TMC has expelled two legislators, Shondipan Saha and Rituprat Banerjee, for anti-party activities, absenteeism from key meetings and public remarks critical of the party leadership. The move comes amid internal turmoil following TMC's defeat in the 2026 West Bengal Assembly elections. The last rites of veteran playback singer Suman Kalyanpur were performed with full state honours in Mumbai today. Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai last night. She was 89. One of India's most celebrated singers, she was a prominent figure in Marathi Bhavgeet and Hindi film music. India's industrial production has witnessed a growth rate of 4.9% in April this year as compared to last April, driven by a strong performance in the manufacturing sector. The Ministry of Statistics and Program Implementation said that the data is based on revised Index of Industrial Production, IIP series, with base year 2022-23. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championship, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside the home turf. Prime Minister Modi has congratulated the Indian contingent on winning 19 medals. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र

आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा

0: विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

0: और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा

0: प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal

0: ফিরছি সংবাদের পর 11:10।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে অরুণ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्थिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज करने के साथ बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ